0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তায় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর উড়িষ্যা উপকূলে 14 আগস্ট 2026 পর্যন্ত ঘণ্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, যার গতিবেগ বেড়ে 55 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা। মৎস্যজীবীদের 14 আগস্ট 2026 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর উড়িষ্যা উপকূলে সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সকাল 6টায় সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা একটু পরেই শুনতে পাবেন।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বৈষ্ণবী। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह।

बाजार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15-30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

শুনলেন রামচরিতমানস পর্ব 199। এখন ভজন, শিল্পী অনির্বাণ দাশ।

0: मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 270 होरातः न्यूनसमये निस्तारयति। नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजा धारकाणां वैदेशिक नागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रियपत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता। एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदम् उच्चगुणवत्तायुक्तस्य उचितमूल्येन उचितसमये उचितोत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति। नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मन्त्री उक्तवान्। श्रीगोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिकधनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन 3 कोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 25 लक्ष कोटि रूप्यकाणां वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्ष कोटि रूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटि रूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे, पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष

0: पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
1: The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Atari and Agartala. The ministry said that the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. It noted that India provides approximately 95% e-visas applications in less than 72 hours. With the latest addition, the total number of international ports enabling entry of e-visa holder foreigners has increased to 88, including 37 airports, 38 seaports and 13 land ports. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. Doctors described his condition as critical after a drastic drop in his blood sugar level. Mr. Mahato has been on a hunger strike for 9 days over alleged irregularities in recruitment examinations in the state. Mr. Mahato claims to have been injured during a police lathi charge near the Jharkhand assembly. The BJP has called for a Jharkhand Bandh today to protest against police atrocities and lathi charge on students agitating. BJP state president Aditya Sahu said the Bandh will be effective from 8 a.m. till midnight today. He said all essential services, however, are excluded from the purview of the shutdown. Several agitators and four policemen were injured.

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी।

0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
1: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
4: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन

0: ने भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H1B और L1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण

0: चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
4: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and 9 land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travellers. Around 95% of e-visa applications are processed in

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 9:10 का और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम रसधारा और आज की रसधारा कुछ खास है क्योंकि आज हम सिर्फ आजादी की बात नहीं करेंगे बल्कि उस आजादी की कहानी में उन महिलाओं की आवाज भी सुनेंगे जिनके साहस ताकत और संघर्ष के बिना शायद हमारी स्वतंत्रता की कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती।

दोस्तों, आजादी ये शब्द सुनते ही हमारे मन में तिरंगा आता है। स्वतंत्रता सेनानियों के चेहरे आते हैं, जेल की सलाखें दिखाई देती हैं, आंदोलन के नारे सुनाई देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस पूरे संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने क्या किया? उन्होंने केवल पुरुषों का साथ नहीं दिया, उन्होंने स्वयं मोर्चा संभाला, जेल गई, लाठियां खाई, गोलियां झेली, भूमिगत आंदोलन चलाए, संदेश पहुंचाया और कई बार अपने परिवार तक को देश के लिए पीछे छोड़ दिया।

दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता की कहानी दरअसल सिर्फ पुरुषों की वीरगाथा नहीं है, ये उन बेटियों, बहनों, माताओं और पत्नियों की कहानी भी है जिन्होंने अपने हिस्से का डर त्याग कर इतिहास लिखा। और ऐसी ही भावनाओं से भरे एक गीत को आज हमने अभी फिलहाल अस्थाना में सुना। किसी भी स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1857 भारत के इतिहास में वो दौर जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ। इस विद्रोह की सबसे चमकदार तस्वीरों में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी महिला जिसके हाथ में तलवार थी, सामने अंग्रेजी सेना थी और मन में अपनी झांसी को बचाने का संकल्प। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें ये बताता है कि वीरता का कोई लिंग नहीं होता। जब देश और सम्मान पर संकट आया तो उन्होंने युद्ध भूमि में उतरने में एक पल भी झिझक नहीं की। लेकिन 1997 की ये संघर्ष केवल झांसी तक सीमित नहीं रही, इसमें और भी वीरांगनाओं की कहानियां जुड़ती चली गई। बताएंगे उस बारे में, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गीत।

तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 1857 का संघर्ष केवल झांसी तक सीमित नहीं था। बेगम हजरत महल ने अवध में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य भारत में विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी 1857 की उस आग में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही प्रखर रही। समय आगे बढ़ा, आंदोलन का स्वरूप बदला, लेकिन महिलाओं की भूमिका कम नहीं हुई। 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बनने लगा। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह और असहयोग का रास्ता अपनाया, तब बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली। कस्तूरबा गांधी ने सिर्फ गांधी जी की पत्नी के रूप में इतिहास में जगह नहीं बनाई, उन्होंने स्वयं आंदोलनों में भाग लिया, जेल गई और महिलाओं को जागरूक किया। कमला नेहरू ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार में हिस्सा लिया। और फिर आती है एक ऐसी महिला जिनकी आवाज कविता भी थी और आंदोलन भी थी, सरोजिनी नायडू।

दोस्तों, सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल कवियत्री की नहीं थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थी। उन्होंने सत्याग्रहों में हिस्सा लिया, जेल गई और भारतीय महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कभी कभी इतिहास हमें तारीखें और घटनाएं याद कराता है, लेकिन संगीत उन घटनाओं के पीछे छिपी भावनाएं याद कराता है। तो आइए आजादी की उसी भावना को एक और गीत के माध्यम से महसूस करते हैं।

आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका का एक और महत्वपूर्ण पहलू था घर से बाहर निकलना। आज हमारे लिए सामान्य बात है कि महिलाएं शिक्षा, नौकरी, राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय हो, लेकिन उस समय परिस्थितियां बहुत अलग थी। एक महिला का सार्वजनिक जीवन में उतरना अपने आप में एक सामाजिक चुनौती था। फिर भी हजारों महिलाओं ने अपने घरों की चौखट पार की। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने में हिस्सा लिया, शराब की दुकानों में सामान्य धरना दिया, स्वदेशी अपनाने का संदेश फैलाया, सत्याग्रह किया। और इनमें सिर्फ बड़े शहरों की शिक्षित महिलाएं नहीं थी, गांवों और कस्बों की सामान्य गृहिणियां भी आंदोलन का हिस्सा बनी।

किसी भी जन आंदोलन की असली ताकत होती है जब इतिहास सिर्फ नेताओं का नहीं रहता बल्कि आम लोगों का हो जाता है। 1942 आया भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। अंग्रेजी सरकार ने बड़े पैमाने पर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। इसी समय एक नाम सामने आया, अरुणा आसफ अली। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में उन्होंने तिरंगा फहराया। उस समय अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे माहौल में अरुणा आसफ अली का आगे आना एक बड़ा प्रतीक बन गया। वो भूमिगत होकर आंदोलन से जुड़ी रही। लेकिन इसी दौर में एक और महिला की कहानी शायद आज हम बहुत कम लोगों को पता है। कौन है वो बताएंगे जरूर, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गाना।

नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है।

तो दोस्तों बात कर रहे थे हम एक ऐसी महिला की जिनकी कहानी शायद आज भी बहुत कम लोगों को पता है। नाम था उषा मेहता। जब अंग्रेजों ने समाचारों और संचार माध्यमों पर नियंत्रण कर लिया तब उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोचिए एक छोटी सी आवाज रेडियो के माध्यम से पूरे देश तक पहुंच रही। अंग्रेज उस आवाज को बंद करना चाहते लेकिन वो आवाज लगातार कर रही है, भारत लड़ रहा है। ये सिर्फ रेडियो नहीं थी, ये उस समय उम्मीद की आवाज थी और शायद इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में गीत और आवाज का इतना महत्व था। क्योंकि जब हथियार छीन लिए जाए, सभाएं रोक दी जाए और नेताओं का को जेल में डाल दिया जाए तब भी एक गीत लोगों के दिलों तक पहुंच ही सकती है। तो इसी भावना के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत। चलिए

दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई केवल भारत की धरती पर नहीं लड़ी जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और महिलाओं का भी सैन्य भूमिका दी। रानी झांसी रेजिमेंट, ये नाम अपने आप में एक घोषणा थी। ये रेजिमेंट की कमान संभालनी कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। एक डॉक्टर, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसी महिला जिसने साबित किया कि देश की आजादी के संघर्ष में महिलाएं सिर्फ समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए भी तैयार थी। सोचिए, उस समय जब महिलाओं के लिए सामाजिक सीमाएं बहुत मजबूत थी, तब एक महिला सैनिकों की टुकड़ी ने नेतृत्व कर रही थी। ये सिर्फ सैन्य इतिहास की घटना नहीं थी, ये भारतीय महिला की बदलती हुई पहचान की घोषणा थी। और आजादी की इस पूरी यात्रा में हमें एक बात बार बार दिखाई देती है, कभी महिला तलवार लेकर सामने खड़ी है, कभी सत्याग्रह कर रही है, कभी जेल जा रही है, कभी भूमिगत रेडियो चला रही है, कभी सैनिकों का नेतृत्व कर रही है और कभी कभी अपने घर के पुरुषों को देश के लिए संघर्ष करने का साहस दे रही है। यानी आजादी की लड़ाई में महिला की भूमिका एक नहीं अनेक थी। लेकिन क्या आजादी सिर्फ 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी? राजनीतिक स्वतंत्रता हमें 1947 को मिली, लेकिन एक समाज के रूप में महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता की यात्रा उसके बाद भी जारी रही। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं अगला गीत।

अब जाने का वक्त हो चला है, पर मिलूंगी वापस कार्यक्रम सुरभि के साथ ठीक दोपहर को 12 बजे। तो दोस्तों, जब भी तिरंगा हवा में लहराए तो हमें सिर्फ गर्व महसूस ना हो, हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने इस तिरंगे को सम्मान के साथ लहराने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और उन महिलाओं की भी जिन्होंने साबित किया कि देश की आजादी की लड़ाई में आधी आबादी केवल दर्शक नहीं थी, वह स्वयं इतिहास की निर्माता थी। इसी सम्मान, इसी स्मृति और इसी गर्व के साथ आज की रसधारा पे मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तब तक अपने देश से प्यार कीजिए, उसकी विविधता का सम्मान कीजिए और शहीदों को याद रखिए जिनकी वजह से हम आजाद हवा में सांस लेते हैं। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो तो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:16:26 हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हरदिल अजीज शायस्ता नाज, और आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन, सबसे पहले पेश है आईना। आईना में आज हम बात करेंगे मौसीकी की दुनिया के एक ऐसे मुनफरिद सास की जो धात से तैयार होता है, लेकिन उसकी आवाज़ में समुंदर की लहरों, कार्निवल की खुशियों और जजायर कैप्रिसन सकाफत की झलक महसूस होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टील पैन की, और आज मनाया जा रहा है आलमी स्टील पैन डे। ये दिन हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका मकसद स्टील पैन की तारीख, सकाफती अहमियत और मौसीकी की दुनिया में उसके मुनफरिद किरदार के बारे में आगाही पैदा करना है। सामीन, स्टील पैन को आमतौर पर स्टील ड्रम भी कहा जाता है, लेकिन उसकी साख्त और बजाने का अंदाज उसे दुनिया के दूसरे साजों से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। इस साज की इब्तिदा से हुई 20वीं सदी के दौरान वहां के लोगों ने धाती डब्बों और को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा साज तैयार किया जिसे मुख्तलिफ सुर पैदा किए जा सकते थे। इब्तदाई दौर में ये साज महज तफरी का जरिया नहीं था, बल्कि ये लोगों की तख्लीकी सलाहियत, जिद्दत और सकाफती इजहार की अलामत भी बन गया। स्टील पैन की खास बात यह है कि इसकी आवाज़ किसी तार या रिवायती झिल्ली से नहीं, बल्कि धात की सतह पर मखसूस हिस्सों को ज़रब लगाने से पैदा होती है। स्टील पैन के ऊपर मुख्तलिफ हिस्से बनाए जाते हैं जिनमें हर हिस्से में एक मखसूस सुर पैदा होता है। मौसीकार मखसूस छड़ियों की मदद से उन हिस्सों को बजाता है, और यूं मुख्तलिफ सुरों को मिलाकर खूबसूरत धुनें तख्लीक की जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खुदी राम यौम शहादत पर। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के एक ऐसे नौजवान मुजाहिद आज़ादी को याद कर रहे हैं जिन्हें इंतहाई कम उम्र में वतन की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वतन की आज़ादी के लिए कम उम्र में अजीम कुर्बानी देने वाले ये शख्स नहायत ही मुल्क परस्त बुलवतनी के दिलदादा थे। ये दास्तान है खुदी राम बोस की, जिनका नाम हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की तारीख में गैर मामूली जुरात, हौसले और कुर्बानी की अलामत बन चुका है। 11 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख में खुदी राम बोस की यौम शहादत के तौर पर याद किया जाता है। 1908 में इस दिन सिर्फ 18 बरस की उम्र में खुदी राम बोस को बरतानवी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। खुदी राम बोस की पैदाइश 3 दिसंबर 1879 को मौजूदा मगरबी बंगाल के मिदनापुर जिला के भिवबनी गांव में हुई। बचपन ही से उनके दिल में अपने वतन से गहरी मोहब्बत थी। उस जमाने में हिंदुस्तान बरतानवी इकतदार के जेर तसल्लुत था, और आज़ादी के लिए

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म केसरी से ये नगमा, आवाज थी बी प्राक की और कलाम था मनोज मुंतशिर का और मौसिकी से सजा था आरको ने। दोस्तों वक्त चला है मंजरनामे का। मंजरनामा में आज आप समाप्त फरमाएंगे अकलियतों के लिए स्कॉलरशिप पर गुफ्तगु। तालीम इंसान की जिंदगी बदलने की सबसे मुअसर ताकत है। तालीम न सिर्फ फर्द के लिए रोजगार और तरक्की के दरवाजे खोलती है बल्कि एक मजबूत बाख्तार और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद भी रखती है। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे तुलबा हैं जो जहानत सलाहियत और मेहनत के बावजूद माली मुश्किलात की वजह से अपनी तालीम जारी रखने में दुश्वारी महसूस करते हैं। खुसूसन मुआशी तौर पर कमजोर खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अकलियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप एक अहम सहारा बन सकता है। आज के हमारे प्रोग्राम मंजरनामा में हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में अकलियती बरादरियों के लिए तुलबा के लिए दस्तयाब स्कॉलरशिप और तालीमी मुआवनत के बारे में। अकलियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप का मकसद उन्हें आराम पहुंचाना है और उन्हें आराम से अपनी तरबियत अपनी स्किल को कंप्लीट करना है मुकम्मल करना है। दोस्तों हिंदुस्तान एक कसीरुल सकाफती कसीरुल लसानी और मुख्तलिफ मजहब व बरादरियों मुश्तमिल मुल्क में है। मुल्क की तरक्की में हर तबके की मसावी शिरकत जरूरी है। स्कॉलरशिप इसी मकसद के तहत शुरू किया जाता है। हुकूमत हिंद इसी मकसद के तहत कि अकलियतों को बेहतरीन मौके हासिल हों इस मकसद के तहत तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करती है। मुख्तलिफ अवकात में अकलियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की तालीमी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप और फलाही प्रोग्राम चलाए गए हैं।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद की आवाज़ में, ये नगमा फिल्म का नाम था परदेसी बाबू। कलाम था आनंद राज आनंद का और मौसीकी से सजाया था आनंद राज आनंद ने। दोस्तों पेश है हफ्तरोज़ा प्रोग्राम रोजगार के मौके, जिसमें अब आप सुनेंगे ट्रांसलेटर पर के मौजू पर गुफ्तगू, जिसमें हम आपको रोजगार, हुनर, पेशा, रोज़ाना तालीम और ख़ुद रोज़गारी के मुख्तलिफ अमकनात से रोशनास कराते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैसे पेशे की, जिसमें ज़बान सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि रोज़गार और पेशा वाराना कामयाबी की एक मजबूत बुनियाद बन सकती है। हमारा मौजू है ट्रांसलेटर यानि मुतरजम का पेशा। दुनिया तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ रही है। कारोबार, तालीम, सियाहत, मीडिया, सरकारी अमूर, अदालत, तिब, टेक्नोलॉजी और बैनुल अक्वामी ताल्लुकात, हर शोबे में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद और अदारे एक दूसरे से राबते में हैं। ऐसे में एक ज़बान की पैगाम को दूसरे ज़बान में दुरुस्त, वाज़े और बामाने अंदाज में मुंतकिल करने वाले माहरीन की ज़रूरत बढ़ रही है। ट्रांसलेटर यानी मुतरजम वो शख्स होता है जो किसी तहरीर, दस्तावेज़, किताब, मजमून, वेबसाइट, रिपोर्ट या दूसरे तहरीरी मवाद को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में है और उसे उर्दू में समझने के लिए पेश करना हो तो एक माहिर मुतरजम उसके मफहूम को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करेगा। इस तरह उर्दू से हिंदी, हिंदी से अंग्रेज़ी, बंगाली से उर्दू या किसी भी दूसरी ज़बान के दरमियान तर्जुमा किया जाता है। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि तर्जुमा सिर्फ लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़बान बदलने का नाम नहीं है। एक अच्छा मुतरजम असल तहरीर के मफहूम, अंदाज, इसबाक व सबाक और जज्बात को समझकर उसे दूसरी ज़बान में इस तरह पेश करता है कि पढ़ने वाले को वही बात फितरी अंदाज में समझ आए। इसलिए एक कामयाब मुतरजम के लिए सिर्फ दो ज़बानें जानना काफ़ी नहीं बल्कि दोनों ज़बानों पर मजबूत गिरफ्त, अच्छी तहरीरी सलाहियत, वसी मुताला, मौजू को समझने की सलाहियत भी ज़रूरी है ताकि तर्जुमा के बाद जो एहसास तहरीर का होगा वो दूसरी ज़बान में वही एहसास समझ में आ जाए। अब सवाल यह कि मुतरजम बनने के लिए किन सलाहियतों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली और बुनियादी सलाहियत है ज़बान पर उमूर, जिस ज़बान से तर्जुमा करना है और जिस ज़बान में तर्जुमा करना है। दोनों ज़बानों की ग्रामर, अल्फाज, मुहावरात, जुमलों की साख्त और रोज़मर्रा इस्तेमाल से वाकफियत ज़रूरी है। दूसरी अहम खूबी है मुताले का शौक। एक मुतरजम को मुख्तलिफ मौजूआत पर पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसे कभी तालीमी मज़मून, कभी कारोबारी दस्तावेज़, कभी कानूनी मतन, कभी तिबी मालूमात और कभी किसी अदबी तहरीर का तर्जुमा करना पड़ सकता है। तीसरी अहम सलाहियत है तहकीक करने की आदत। अगर मुतरजम को किसी ख़ास शोबे की इस्तिलाह मालूम ना हो तो उसे मतबर ज़राए से उसके दुरुस्त माने और इस्तेमाल की

दोस्तों भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में, ये नगमा फिल्म का नाम था भुज और कलाम था मनोज मुंतशिर का, मौसीकी से सजाया था आरको ने। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा। कलाम था राम प्रसाद बिस्मिल का और मौसीकी सजाया था जयदेव ने। दोस्तों, वक्त हो चला है अगला प्रोग्राम का और आप सुनते रहिए अगला प्रोग्राम। और अपने दोस्त शायस्ता को दीजिए इजाज़त। आदाब।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:01 का और समय है हिंदी कार्यक्रम सुरभि की। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम सुरभि की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। और आज चर्चा है में बात करेंगे हम खुदीराम बोस बलिदान दिवस पर। आज चर्चा है एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की जिसने जिस उम्र में नौजवान अपने भविष्य का सपना देखना शुरू करते हैं उस उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। नाम था खुदीराम बोस। 3 दिसंबर 1879 को बंगाल के मिदनापुर में जन्मे खुदीराम बोस बचपन से ही देश की गुलामी और अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से व्यथित थे। किशोरावस्था में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। उनके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इतना प्रबल था कि बहुत कम उम्र में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1908 में उन्हें मुजफ्फरपुर के ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की जिम्मेदारी मिली। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि दो यूरोपीय महिलाएं सवार थी। इसके बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार किए गए, मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को महज 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। इतनी कम उम्र में उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि अपने देश के लिए कुछ कर पाने का संतोष था। कहा जाता है कि वो हंसते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। खुदीराम बोस का जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल इतिहास के किताब में लिखा हुआ एक शब्द नहीं बल्कि इसके पीछे अनगिनत युवाओं का साहस, त्याग और बलिदान छिपा है। आज खुदीराम बोस बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश के लिए प्रेम सिर्फ बड़े बड़े नारों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में भी दिखाई देता है। शहीद खुदीराम बोस को शत शत नमन। इसी के साथ दोस्तों हमने बात की चर्चा है में आज खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर। आगे बढ़ते हुए चलिए सुन लेते हैं एक गाना सोनू निगम और हरिहरन की आवाज में, उसके बाद सुनेंगे एक विशेष वार्ता।

0: तो दोस्तों कार्यक्रम सुरभी में आगे बढ़ेंगे और पहल के अंतर्गत आज हम सुन लेंगे खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर एक हिंदी वार्ता और वार्ताकार है मृत्युंजय सिंह। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये कार्यक्रम।
1: सरीखे क्रांतिकारी के बारे में कुछ बात मैं करने वाला हूँ। उसे भारतवर्ष में भगत सिंह और अशफाक उल्लाह से भी ज्यादा शिद्दत से याद किया जाता है। सच तो यह है कि यह बालक क्रांतिकारी भगत सिंह जैसों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महोबनी केसपुर मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पैदा हुए खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है 11 अगस्त 1908 को। आपको पता है खुदीराम बोस को खुदीराम ही क्यों कहते हैं? खुदीराम अपने पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और माता लक्ष्मी प्रिया देवी के तीन पुत्रियों के बाद एकमात्र पुत्र थे। जैसे तीन कौड़ी में खरीदे गए आदमी का नाम तीन कौड़ी, पांच कौड़ी में खरीदे गए आदमी का नाम पांच कौड़ी, उसी तरीके से आप समझिए कि खुद देने की वजह से ही खुदीराम बोस को खुदीराम के नाम से जाना गया। खुदीराम बोस थे तो बचपन से ही बड़े शरारती और 6 साल की उम्र में थे तब उनके माता पिता दोनों ही एक के बाद एक गुजर गए। इनकी बहन ऐसे ही खरीद चुकी थी, तो इनकी बहन जो थी अपरूपा राय और उनके बहनोई जिनकी शादी उनकी हो गई थी अमृतलाल राय, इन्होंने खुदीराम को ले गए तमलू के हैमिल्टन कॉलेज स्कूल में। उसको पढ़ाई लिखाई करवाई, वहीं पर पांचवी छठी पढ़ते ही इन्होंने, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था इनका। 1902 में श्री अरविंदो और भगनी निवेदिता जब मिदनापुर में आई और वहां पर उनके क्रमिक रूप से कई सारे भाषण हुए तो उससे बहुत प्रभावित हुए, यह लड़का बहुत प्रभावित हुआ खुदीराम, तो उन्होंने एक छात्र भंडार भी शुरू किया जहां पर लड़कों को तरह तरह की के साहित्य पढ़ाए जाते थे, खास करके क्रांतिकारी साहित्य जो इटली के रेवोल्यूशन के या बिस्मार्क के यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में, और यहां के भी बड़ी सारी पैम्फलेट्स वगैरह बनाए जाते थे, आपस में आलोचना होती थी समालोचना होती थी चीजों की। उसी समय आप सबको याद होगा जो शाही इतिहास से थोड़ा आमद रफ्त रखते हैं कि बंग भंग के बाद बंग

बंगाल में अचानक से एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, लोगों में बंगाली समाज, बंगाली भावना बिल्कुल ही विद्रोह कर उठी। और उस समय ही आप देखेंगे हमारे सूर्यसेन, मास्टर दा वगैरह सारी कथक कथाएं उसी समय से निकलती हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यह पहला मौका था जब मिदनापुर गढ़ बना और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उसकी धुरी बने और ये खुदीराम बोस जैसे लड़कों को, लेकिन बच्चा माना नहीं, उसे क्या मतलब। तो एक पुलिस वाले को भी उन्होंने बता दिया। अब पुलिस वाला इसके पीछे पड़ा कि तुम बंद करो, तो पुलिस वाले को इन्होंने एक घूंसा मारा और धक्का देकर भाग चले। बाद में इनको पकड़ा भी गया, लेकिन इनकी उम्र देखकर जज ने इनको छोड़ दिया, कहा कि अब ठीक है, बच्चा है, इसको एक बार समझा बुझा कर छोड़ दो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह बच्चा नहीं, अग्निपुंज है। और जब भूपेंद्रनाथ दत्त जो युगांतर के संपादक थे, जब उनको बहुत ही कड़ी सजा मिली डगलस को किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो अलीपुर कोर्ट के सिटी मजिस्ट्रेट थे, तब से उन पर बहुत ही खतरा बढ़ने लगा। जितने भी क्रांतिकारी थे लगे हुए थे कि कैसे इनको मारें, और तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनका स्थानांतरण कर दिया गया मुजफ्फरपुर में, जाके वो सेशन कोर्ट के जज बन के गए। लेकिन कलकत्ता पुलिस को पता था ऐसा कुछ चक्र तैयार हुआ, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, छोटी सी फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी जहां बम बनाए जाते थे। वहीं से किंग्सफोर्ड जब यहां से मुजफ्फरपुर गए, तब उनको एक किताब बम के रूप में भेजा गया था कि ताकि वो जैसे ही खोले, वो स्प्रिंग वेस्ट था कि जैसे ही खोले वैसे ही बम फट जाए। हालांकि वो उन्होंने किताब खोली नहीं, वो ज्यों के त्यों रख दी गई, उनके सामान के साथ मुजफ्फरपुर चला गया। वो आज की तारीख में भी आपकी जो नॉर्थ कलकत्ता में जो म्यूजियम है उसमें आपको वो बम अभी मिल जाएगा, रखा हुआ है वहां पर। हेमचंद्र कानूनगो ने ही वह बम बनाया था जो खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी पहले अकेले ही जाने वाले थे, लेकिन खुदीराम बोस को उनके साथ भेजा गया यह बम देके मुजफ्फरपुर में जाके उसे मारना है। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे ये लोग, वहां पर भी एक अच्छा जाल फैला रखा था यहां के लोगों ने। वहां किशोरी मोहन मुखर्जी या बंदोपाध्याय जब चढ़े, तो इन्होंने अचानक से जब आगे बढ़ी वो फिटन उनकी घर के पास पहुंची मोड़ पे, तो अचानक प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने दौड़कर सड़क के किनारे से आके आक्रमण किया और बम फेंका। इन्हें यह पता नहीं था कि उस फिटन में किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उसमें इनके एक सहयोगी थे वहां पर जज प्रिंगल कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी। फल यह हुआ कि उनकी पत्नी उनकी बेटी तो तुरंत ही मर गई, पत्नी दो दिन के बाद मरी। और इसके बाद ये दोनों भागे 25 माइल तकरीबन पार करके दूसरे दिन दोपहर में वैनी एक जगह है जो कि आज के दिन खुदीराम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पूसा में, वहां पहुंचे। और वहां जाकर अस्त व्यस्त अवस्था में प्यासे थे, एक दुकान में जब जाकर पानी मांगने लगे, तभी वहां पर फतेह सिंह और शिव बहादुर सिंह नाम के दो सिपाहियों को शक हुआ, क्योंकि सब जगह खबर तो इतला तो चली गई थी, भाई इतना बड़ा आप घटना घट गई है, कांड हुआ है, तो सब जगह पुलिस को बता दिया गया था। उसने इनको रोका और रोकते के साथ ही ये लड़का जो है इसने कोशिश किया, छीना झपटी हुई, उसमें एक रिवॉल्वर गिर गई इसके पॉकेट से निकल के, और फिर इसको इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 2 रिवॉल्वर, 30 गोलियां और एक कोट जो उन्हें बांधे हुए थे वो उनको मिला, और इनको उठाकर ये अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले गए। उधर प्रफुल्ल चाकी को भी किसी ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन समस्तीपुर से टिकट कटाकर मोकामा घाट के होते हुए हावड़ा के लिए, लेकिन वो उनके उसी ट्रेन में जी नंद कुमार बैनर्जी करके एक इम्पीरियल पुलिस का इंस्पेक्टर हुआ करता था, उसको संदेह हो गया था, उसने मोकामा घाट तार कर दिया। जब ये पानी पीने के लिए उतरे थे, उसे कोशिश की गई पकड़ने की, और जब प्रफुल्ल चाकी भागे तो उन्होंने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकता, मैं पकड़ा ही जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली खुद से मार के गोली। लेकिन खुदीराम की खासियत यह है कि जब खुदीराम को गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर जब लाया गया, तब जनता चारों तरफ से उमड़ पड़ी थी उनको देखने के लिए, और इस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये लड़का बिल्कुल लोगों को हाथ हिलाता हुआ और खुश मिजाज, जैसे कि कुछ हुआ न हो। और तो और, जब वो आए हैं, जब जेल में थे और जिस दिन फांसी दिन लगनी है, कहते हैं लोग, उनके एक उपेंद्रनाथ सेन वकील पत्रकार थे, उनका कहना था कि जाते जाते उसने अपने वकील को मुस्कुरा कर देखा, और जो जल्लाद है जो फांसी लगाने वाला, उससे पूछा भी कि रस्सी में मोम क्यों लगाते हैं। आप सोच सकते हैं उस लड़के के अंदर का जो एक निर्भीक, एक जो आत्मा, कैसी आत्मा होगी वो, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मान के ही चला था जैसे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होना है मुझे।

0: और 11 अगस्त को तमाम बड़ी सी हियरिंग के बाद, वो एक बड़ी लंबी कथा है कि कैसे केस लड़ा गया, लंबी उसका पूरी हियरिंग के बाद उसको फांसी की सजा हुई और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दी गई। वो हमारे देश में बहुत ही काला दिन था हमारे लिए, यहां के लोग बड़ी दुखी हुए उसी के लिए। उसके बाद पीताम्बर दास हमारे पल्ली कवि बांकुड़ा के जो है, उन्होंने वो आप लोग सब लोग सुनते होंगे आजकल, एक बार विदाई दे मां घुरे आसी, हेसे हेसे पूर्व फांसी देखबे भारतवासी, एक बार विदाई दे मां घुरे आसी। ये गीत लगता था जैसे कि उन्होंने ही फांसी चढ़ते हुए गाया हो, लेकिन ये पीताम्बर दास पल्ली कवि हैं, लोक कवि हैं मांकुड़ा के, उन्होंने यह गीत लिखा था और गाया भी था। बाद में हाल फिलहाल में फिल्म भी बनी है, एक ये 2017 में फिल्म बनी थी मैं खुदीराम बोस हूं, और एक खुदीराम बोस तेलुगु में फिल्म बनी है 2022 में, जो 53वें गोवा के 53वें हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म के रूप में ये दिखाई गई थी। तो ये थी दोस्तों खुदीराम बोस की साहसिकता और निर्भीकता और उस क्रांतिकारी मन की कथा।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे खुदीराम बोस बलिदान दिवस पर एक हिंदी वार्ता, और वार्ताकार थे मृत्युंजय सिंह। और अब विदा लेने का वक्त आ चुका है, और विदा लेते लेते आप सुनेंगे देव नेगी शाश्वत सचदेव की आवाज में फिल्म उरी से ये गाना। और मिलती हूँ मैं किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। अब तक के लिए बने रहिए 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। थोड़ी देर में अगले

0: coming.
1: Next up is Fatboy Slim, Love Island.

0: With that, we come to an end of West News program. For this edition, we'll be back at 1:10 after news. Please stand by for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार। सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे

0: सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: including the state capital Shimla. A report.
1: In view of the possibility of heavy rainfall in Kullu subdivision today, all educational institutions have been officially closed. According to a report from the State Emergency Operations Center, traffic has been disrupted on 259 roads across the state due to landslides and rain. Besides, 161 power transformers and 54 drinking water supply schemes have also been affected. The Mandi-Kullu National Highway 21 has been blocked near Jhalogi due to shooting stones falling on the road. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in 5 districts, Shimla, Sirmaur, Kangra, Hamirpur and Mandi. A yellow alert has also been issued for 4 other districts, Chamba, Kullu, Solan and Bilaspur today. The department has advised people to exercise caution during adverse weather conditions and avoid unnecessary travel to vulnerable areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Rajasthan over the next 2 days. In Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek of Poland stormed into the semi-finals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider in 64 minutes. The six-time Grand Slam champion will face Ukraine's ninth seed Elina Svitolina, who defeated Ekaterina Alexandrova . Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 398 points to 78,145 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. 9 people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semi-finals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की
3: सदन में चर्चा हो प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं सदन चलना चाहिए
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली।

0: में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
3: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे

0: न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को

0: सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता संचिता। এখন শুনবেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন যন্ত্রসঙ্গীত তবলা, দেবজিৎ পতিতুণ্ডী, তাল ঝাপতাল, হারমোনিয়ামে রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

0: আকাশবাণী কলকাতা, দ্বিতীয় অধিবেশনের সূচনা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার্স অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 55 সেকেন্ড। পরবর্তী অনুষ্ঠান একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और उसकी स्थिति पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई भी तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी है और इसकी प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना भारत की प्राथमिकता है। श्रीलंका और भूटान के साथ रिश्ते और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स आउटरीच सत्र का निमंत्रण दिया गया है। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में अधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
3: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनाम

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर दोस्तों यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बज चुके हैं 5:20 शाम के और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके उर्वशी। दोस्तों उर्वशी कार्यक्रम में मैं रहने वाला हूं आप लोगों के साथ 5:55 तक। और दोस्तों आज हम उर्वशी कार्यक्रम में सुनेंगे एक ही फिल्म से सारे गीत। अब आप सोच रहे होंगे कौन से फिल्म है वो। दोस्तों वो फिल्म का नाम आप खुद ही गेस करिए, खुद ही समझिए। सुनते हैं और बढ़ते हैं पहले गीत की तरफ हमारे आज के इस कार्यक्रम के।

दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म शहीद से। प्रेम धवन ने सजाया था संगीत से, और प्रेम धवन ने ही सवारा था बोल से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिल्म शहीद की। जी हाँ दोस्तों, शहीद रिलीज हुई थी 1965 में और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। शहीद भगत सिंह के जीवन पर बनी ये अब तक की सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुने किस्से दोस्तों मैं आज के इस पूरे क्रम में आपको बताने वाला हूं, तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ यानी अंकित के साथ संचयिता पर कार्यक्रम उर्वशी पर।

सुरेंद्र कौर की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत गुलाम हैदर का संगीत और राजा मियां अली खान के थे बोल। मनोज कुमार का नाम दोस्तों भारत कुमार पड़ा। देशभक्ति की शुरुआत ये मनोज कुमार के करियर की पहली देशभक्ति फिल्म थी। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद ही उन्हें बॉलीवुड में भारत कुमार का नाम मिला।

लता मंगेशकर की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म शहीद से, संगीत से सजाया था प्रेम धवन ने। दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और बिना इंटरवल की ये फिल्म, जी हाँ दोस्तों, है ना खास बात। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस फिल्म के प्रीमियर में सिर्फ 10 मिनट के लिए आने वाले थे। फिल्म में वो इतना खो गए कि उन्होंने पूरी फिल्म देखी। मनोज कुमार को थिएटर ऑपरेटर से कहकर फिल्म का इंटरवल यानी मध्यांतर तक रुकवाना पड़ा ताकि फिल्म लगातार चलती रहे। फिल्म देखने के बाद शास्त्री जी ने मनोज कुमार से जय जवान जय किसान के नारे पर

फिल्म शहीद से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, प्रेम धवन का था संगीत। दोस्तों 5:38 हो चुके हैं, अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है उर्वशी आपकी अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर दोस्तों। और आज उर्वशी में मैं सुना रहा हूं आपको फिल्म शहीद जो कि रिलीज हुई थी 1965 में, उस फिल्म से सारे गीत, बात कर रहा हूं उसी फिल्म के बारे में, रहने वाला हूं इस कार्यक्रम में दोस्तों आप लोगों के साथ मैं 5:55 तक। दोस्तों फिल्म ने 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। मनोज कुमार को इस फिल्म की कहानी पटकथा के लिए जो भी पुरस्कार राशि मिली थी उन्होंने वह पूरी रकम शहीद भगत सिंह के परिवार को दान कर दी थी।

शहीद से एक और गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, मन्ना दे और राजेंद्र मेहता की आवाज में। संगीत से सजाया था प्रेम धवन ने, बोल से सवारा था लेट राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग किसी सेट पर नहीं बल्कि असली जेल की बैरकों, काल कोठरी और फांसी के फंदे वाली जगहों पर की गई थी ताकि दृश्य बिल्कुल वास्तविक लगे।

दोस्तों एक और गीत लता मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म शहीद से। ये गीत कंपोजिशन गुलाम हैदर की थी, लिरिक्स थे राजा मेहर अली खान। फिल्म की सबसे अनोखी बात यह थी कि उस दौर में स्क्रीन पर विलेन यानी खलनायक का रोल करने वाले कलाकारों ने इसमें सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। प्रेम चोपड़ा ने सुखदेव का किरदार निभाया, मनमोहन ने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया, प्राण ने जेल में बंद डाकू कहर सिंह का एक बेहद भावुक और सकारात्मक किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए महान अभिनेता प्राण ने केवल 1000 रुपए की मामूली फीस ली थी और शूटिंग के दौरान पूरी फिल्म यूनिट के खाने पीने का खर्चा भी अपनी जेब से उठाया था।

दोस्तों महेंद्र कपूर, मुकेश और राजेंद्र मेहता की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत शहीद से। प्रेम धवन का संगीत था, प्रेम धवन के ही थे बोल। दोस्तों हमने तो बात की शहीद 1965 के बारे में, अब बात करते हैं शहीद 1948 के बारे में। 1948 में रिलीज हुई थी दोस्तों ये फिल्म। भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है क्योंकि ये आज़ादी 1947 के ठीक एक साल बाद रिलीज हुई थी। उस समय देश में देशभक्ति का माहौल चरम पर था। इस फिल्म से सुनते हैं एक पहला गीत आप लोगों के लिए।

दर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे।

फिल्म शहीद से गीता रॉय की आवाज़ में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत। अब बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित लेगा थोड़ी देर के लिए इजाजत, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलने वाला हूँ ठीक 6:10 पर कार्यक्रम वार्ता लेकर, और अगला कार्यक्रम होगा इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोग। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost persons. Now please stand by for the news from Delhi.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Vishal Sharma. संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी।

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर दोस्तों ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो की घड़ी बज चुके हैं 6:10 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके वार्ता। और आज वार्ता कार्यक्रम में दोस्तों हम बात करेंगे आपसे संगीत संस्कृति और समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम स्टीलपन।

भारतीय संगीत केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ये भारत की गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है। ये संगीत विविध धार्मिक परंपराओं, जातियों, समुदायों, त्योहारों और जीवन शैली के माध्यम से भारतीय समाज में गहराई से रचा बसा है। शास्त्रीय लोक और धार्मिक संगीत की परंपराएं ना केवल सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करती है बल्कि सामाजिक एकता, आध्यात्मिक चेतना और सामुदायिक जीवन में भी योगदान देती है। ये शोध पत्र भारतीय संगीत के विकास, उसके विविध स्वरूपों और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। संगीत किस प्रकार सामाजिक आंदोलन, धार्मिक अनुष्ठानों, जातीय पहचान और लोक संस्कृति की माध्यम बनाता है, इस पर भी विचार किया गया। इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में संगीत की सामाजिक भूमिका जैसे शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता अभियानों में उपयोग को भी इस अध्ययन में समाहित किया गया है। मुख्य शब्द भारतीय संगीत, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक चेतना, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, धार्मिक संगीत, सांप्रदायिक समरसता, सामाजिक एकता, संगीत और शिक्षा। भारत विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है, जहां की संस्कृति केवल ग्रंथों, मंदिरों या ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं है बल्कि लोक जीवन, लोक परंपराओं, लोक कलाओं और लोक संगीत में भी समान रूप से जीवित है। भारतीय संस्कृति की वास्तविक शक्ति उसके गांवों, उसकी जन परंपराओं, उसके लोकगीतों, उसके त्योहारों और उसके सांस्कृतिक आयोजनों में दिखाई देती है। लोक कला और लोक संगीत भारतीय समाज की सामूहिक स्मृति है। इनमें हमारी धार्मिक परंपराएं, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक संस्कार, कृषि जीवन, प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रीय भावना समाहित होती है। यही कारण है कि भारतीय लोक कला और लोक संगीत को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। आज जब आधुनिकता और डिजिटल युग के प्रभाव में अनेक लोक परंपराएं विलुप्त की है और बढ़ रही है, तब इन्हें संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी दिशा में सनातन संस्कृति संघ अपने समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम TVDP और आश्मा के माध्यम से सांस्कृतिक जागरण, संस्करण संरक्षण, ग्रामीण विकास और लोक परंपराओं के पुनर्जीवन का कार्य कर रहे हैं। लोक कला और लोक संगीत क्या है? लोक कला और लोक संगीत किसी समाज की आत्मा का स्वरूप होता है। यह वास्तविक अभिव्यक्ति में जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और व्यवहारिक रूप से हस्तांतरित होती रहती है। लोक कला में शामिल है चित्रकला, भित्ति चित्र, हस्तकला, लोक नृत्य, लोक नाटक, मूर्तिकला, पारंपरिक शिल्प। लोक संगीत में शामिल है लोकगीत, भजन, मंगल गीत, वीर रस गीत, कृषि गीत, उत्सव गीत, धार्मिक गायन। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन

रंजन नहीं बल्कि संस्कार, शिक्षा और सामाजिक एकता का प्रसार करना। भारतीय संस्कृति में लोक कला का महत्व, भारतीय संस्कृति में लोक कला सदैव समाज का दर्पण रही है। लोक कलाएं हमें बताती है समाज कैसे सोचता था, लोग कैसे जीवन जीते थे, धार्मिक परंपराएं कैसी थी, प्रकृति के साथ संबंध कैसा था, परिवार और समाज का स्वरूप क्या था। लोक कला संस्कृति को जीवित रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। लोक संगीत जनमानस की आवाज। भारत में लोक संगीत केवल गीत नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। बच्चे के जन्म से लेकर विवाह तक और कृषि कार्य से लेकर धार्मिक उत्सवों तक हर अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। लोक संगीत में समाहित होता है भक्ति, प्रेम, करुणा, वीरता, प्रकृति, सामाजिक एकता, धर्म। इसलिए लोक संगीत को भारतीय संस्कृति की जीवंत धड़कन कहा जाता है। सनातन संस्कृति और लोक परंपराएं, सनातन संस्कृति का विकास केवल शास्त्रों के माध्यम से नहीं हुआ बल्कि लोक परंपराओं के माध्यम से भी हुआ। भारत के गांवों में रामायण गायन, कृष्ण भक्ति गीत, देवी जागरण, कथा वाचन, भजन मंडलियां, लोक नृत्य सनातन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते रहे। यही कारण है कि लोक कला और लोक संगीत को सनातन संस्कृति का जीवंत स्वरूप कहा जाता है। बुंदेलखंड की लोक कला और लोक संगीत। झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, सागर और चित्रकूट क्षेत्र के लोक संस्कृति पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड की लोक परंपराएं इसकी समृद्ध लोक कला, लोक संगीत और लोक नृत्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन सांस्कृतिक धरोहर ने क्षेत्र की विशिष्ट पहचान निर्मित की है और पीढ़ियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखा है। आल्हा गायन। आल्हा केवल लोकगीत नहीं बल्कि वीरता, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की गाथा है। आज भी बुंदेलखंड के गांवों में आल्हा गायन अत्यंत लोकप्रिय है। राय नृत्य। राय नृत्य बुंदेलखंड की प्रमुख लोक नृत्य परंपरा है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक उत्सवों का महत्वपूर्ण भाग है। फाग गीत। होली के अवसर पर गाए जाने वाले फाग गीत सामाजिक एकता और आनंद के प्रतीक हैं। धार्मिक लोकगीत, राम भजन, कृष्ण भक्ति गीत, देवी गीत, शिव स्तुति, विवाह मंगल गीत आज भी ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक कला और धार्मिक परंपराएं। भारतीय संस्कृति में धर्म और कला का गहरा संबंध रहा है। मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। यहां संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प कला का संरक्षण होता था। इसी कारण भारतीय कला में अत्याधुनिकता का विशेष स्थान दिखाई देता है। लोक संगीत और संस्कार। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्व को अत्यंत विशेष माना गया है। मानव जीवन के प्रत्येक चरण से जुड़े संस्कारों का अपना सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है और इन संस्कारों को जीवंत बनाने के लोक संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन्म संस्कार, सोहर गीत, विवाह संस्कार, मंगल गीत, धार्मिक अनुष्ठान, भजन और कीर्तन, कृषि कार्य, खेती और वर्षों से जुड़े लोकगीत। इस प्रकार लोक संगीत जीवन के हर चरण में उपस्थित रहता है। गुरुकुल परंपरा और सांस्कृतिक शिक्षा। प्राचीन भारत में गुरुकुल केवल शिक्षा केंद्र नहीं थे बल्कि संस्कृति संरक्षण और चरित्र निर्माण के प्रमुख केंद्र भी थे। यहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और अत्याधुनिक मूल्यों को शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा का महत्व गुरुकुल व्यवस्था में विशेष रूप से दिखाई देता है क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन के समग्र विकास की शिक्षा प्राप्ति होती थी। यहाँ विद्यार्थियों को सिखाया जाता था संगीत, नृत्य, संस्कार, धर्म, वेद, समाज सेवा। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकी। लोक कला और महिलाओं सशक्तिकरण। भारतीय लोक परंपरा के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। महिलाओं ने पीढ़ियों तक लोकगीत, हस्तकला, लोक नृत्य, पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा है।
तो दोस्तों इसी के साथ

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर दोस्तों यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बज चुके हैं 6:30 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके गोल गोलशन। दोस्तों रहने वाला हूँ 7 बजे तक आपके साथ और इस कार्यक्रम में दोस्तों मैं लाया हूँ कुछ गैर फिल्म गीत यानी नॉन फिल्म सॉन्ग्स आप लोगों के लिए। संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती है जिन्हें किसी फिल्म की कहानी किसी किरदार या किसी सीन की जरूरत नहीं है, बस एक खूबसूरत धुन कुछ सच्चे अल्फाज और दिल से निकली हुई आवाज। आज का ये सफर उन्हीं नॉन फिल्मी गीतों के नाम जो किसी फिल्म का हिस्सा तो नहीं बने लेकिन हमारी जिंदगी के किसी ना किसी एहसास का हिस्सा जरूर बन गए। तो चलिए फिल्मों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सुनते हैं वो गीत जिनकी अपनी एक अलग कहानी है।

फिल्म सोनू निगम की आवाज़ में दोस्तों आप सुन रहे थे कि साजिद वाजिद की था संगीत और फैज़ अनवर के थे बोल। कुछ गीत सचमुच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद कुछ कहने का मन नहीं करता, बस कुछ पल चुप रहकर उस एहसास को महसूस करने का मन करता है, और यही तो खासियत है नॉन फिल्मी संगीत की। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, सीधे हमारी और आपकी होती। अब अगला गीत भी इसी एहसास को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा।

असलम की आवाज़ में दोस्तों आप सुन रहे थे गीत, संगीत से सजाया था खुद असलम ने और बोल से सवारा था रूप जौहरी ने। दोस्तों जिंदगी में हर रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते दोस्ती से आगे होते हैं, कुछ मोहब्बत से भी खास और कुछ बस एक खूबसूरत याद बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं। संगीत उन यादों को आवाज देने का सबसे खूबसूरत जरिया है, इसलिए अगना नॉल फिल्म गीत समर्पित है उन तमाम यादों के नाम जिन्हें हम चाहकर भी अपने दिल से अलग नहीं कर पाते।

कमाल खान की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत। संगीत से सजाया था आनंद राज आनंद ने, बोल से सवारा था वीके मेहता ने। 6:46 हो चुके हैं दोस्तों, अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है गोल गुलशन आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर दोस्तों। और गोल गुलशन में दोस्तों मैं सुना रहा हूँ आपको कुछ गैर फिल्मी गीत यानी नॉन फिल्मी सॉन्ग्स आप लोगों के लिए। रहूंगा 7 बजे तक आपके साथ। कभी कोई गीत हमें किसी पुराने दोस्त की याद दिलाता है, कभी किसी अधूरी कहानी की, और कभी कभी बस यूं ही बिना किसी वजह के दिल को अच्छा लग जाता है। आइए दोस्तों ऐसा ही अपना अगला गीत है जो दिल को बहुत अच्छा लगेगा, सुनते हैं अगला गीत।

यूफोरिया पलाशिन की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे। ये गीत संगीत से सजाया था पलाश और डीजे ने, और बोल से सवारा था पलाश और दहेलिया ने। कहा जाता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, और शायद इसलिए एक अच्छा गीत सुनते हुए हमें ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसे फिल्म में फिल्माया गया है या नहीं। बस धुन अच्छी लगे, शब्द दिल को छू जाए और आवाज अपनी सी लगे, फिर वो गीत हमारा हो जाता है। अब अगला गीत भी कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आया है।

जुनून की आवाज़ में दोस्तों आप सुन रहे थे गीत सलमान अहमद का संगीत और शब्बीर जफार के थे बोल। दोस्तों बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा शान की आवाज़ में और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित लेगा थोड़ी देर के लिए इजाजत, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ फिर ठीक 7:30 पर कार्यक्रम दर्पण लेकर। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: करण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुचा कुमार। द The Parliament

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर। दोस्तों यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बज चुके हैं 7:23 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके दर्पण। और दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले एक नज़र, और आज एक नज़र में हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, खुदीराम बोस बलिदान दिवस के बारे में। खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 वर्ष की आयु में भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलंत तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे, किंतु खुदीराम से पूर्व 17 जनवरी 1872 को 68 कुकाओं के सार्वजनिक नरसंहार के समय 13 वर्ष का एक बालक भी शहीद हुआ था। उपलब्ध तथ्य अनुसार उस बालक को, जिसका नंबर 50वां था, जैसे ही तोप के सामने लाया गया उसने लुधियाना के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कावन की दाढ़ी कसकर पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके दोनों हाथ तलवार से काट नहीं दिए गए। बाद में उसे उसी तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। देखो सरफरोशी की तमन्ना। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनिक नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रिलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद करने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए नौजवान की हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19वें वर्ष में हाथ में भगवद गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैफलेट वितरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन बंग भंग के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों में सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतिक्रिया खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहास सवेता मालती मल्लिक के अनुसार 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वह फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पैम्फलेट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वो भी बच निकले। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों को गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारियों पहले से ही जुट चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उन्हें क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को यह मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई, प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाया भी चाहा, परंतु वे दोनों यहां योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के सामान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे

में ही आने वाली बग्घी पर निशान लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इससे पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद तो उसकी आवाज इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई, जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। देवयोग से गाड़ियां एक जैसी होने के कारण दो यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही विश्राम किया। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। जैसे ही वैनी रेलवे स्टेशन पर खुदीराम पहुंचे, वहां मौजूद दो सिपाही कर्मी जिनके नाम फतेह सिंह और शिव प्रसाद थे, उन्हें खुदीराम के चाल चलन पर तब शक हुआ जब वो किसी चाय की दुकान पर पानी मांग रहा था, साथ ही उसके मैले कपड़े और थकान की वजह। इतना कुछ देखने पर वे उनके नजदीक गए। उन्होंने खुदीराम से कुछ सवाल पूछे, कई जवाब ठीक से ना मिलने से दोनों को शक गहराता गया। उन्होंने उसको झप लिया। खुदीराम ने उनसे छुड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा और आखिरकार पकड़ लिया गया। इधर दूसरी ओर अपने सहकर्मी खुदीराम से बिछड़ने के बाद प्रफुल्ल कुमार काफी दूर तक भागने में कामयाब रहे। तकरीबन दोपहर के वक्त एक व्यक्ति त्रिगुण चरण घोष ने उन्हें अपनी ओर भागते हुए देखा। उन्हें बमबारी की घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और समझ चुके थे कि यह शख्स उन क्रांतिकारियों में से है। उन्होंने उसे पनाह देने का फैसला किया। उसी रात वो खुद प्रफुल्ल के साथ रेलवे स्टेशन कोलकाता छोड़ने निकले। हावड़ा के नजदीक आने के बाद ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर बनर्जी भी उसी ट्रेन में सवार थे। कुछ देर बाद उन्हें प्रफुल्ल के असलियत के बारे में पता चला। प्रफुल्ल भी समझ चुके थे कि वो घिर चुका है। पकड़ में आने से पहले ही वे वहां से भाग निकला, लेकिन अपने आप को चारों ओर घिरा देखकर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। और यह खुदीराम के गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18+ वर्ष थी। दूसरे दिन संदेह होने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी को पुलिस पकड़ने गई, तब उन्होंने स्वयं पर गोली चलाकर अपने प्राणार्पण कर दिया। खुदीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के अंत निश्चित ही था। 11 अगस्त 1908 को भगवद गीता हाथ में लेकर खुदीराम धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था, उनके भय से उसकी शीघ्र ही मौत भी हो गई। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे की खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहास वेता शिरोल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर शहीद और अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। क्रांतिवीर खुदीराम बोस का स्मारक बनाने की योजना कानपुर के युवक ने बनाई और उनके पीछे असंख्य युवक इस स्वतंत्रता यज्ञ में आत्मर्पण करने के लिए आ गए। इस प्रकार के उनके क्रांतिकारियों के त्याग की कोई सीमा नहीं थी। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जूलहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से सचमुच देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उनके साहित्यिक योगदान का अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक नजर खुदीराम बोस पर। अब बात करेंगे हम स्टील पैन पर। स्टील पैन का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है। विश्व स्टील पैन दिवस को स्वीकार करते हुए कहा गया कि स्टील पैन सामाजिक, समाजों, ईस्टर्न क्लस्टर और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, भाषाई गतिशीलता और युवा छात्र संघीकरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। महासभा ने 11 अगस्त को विश्व स्टील पैन दिवस के रूप में मनाया घोषित करने के निर्णय लिया था।
सभा ने हितधारकों को विश्व स्टील पैन दिवस के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य स्टील पैन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सतत विकास के साथ साथ इसके

0: वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सांस्कृतिक विविधता की विविधता संस्कृति और विशेषता हमारे समाज की दृष्टि है और हमें सब पहले से ही कहीं अधिक लुप्त होती है। दुनिया भर में इतने सारे संकटों के बीच लोगों को शामिल करना, साथ आना, एक दूसरे को समझना और बेहतर भविष्य की कल्पना करना कुछ लोगों की चाहत है। संगीत, कला, साहित्य, सिनेमा, नृत्य और संस्कृति को और प्रेरक अभिव्यक्ति के कई अन्य रूप हमें उन फिल्मों से लॉन्च करने के लिए दिखाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक नजर स्टील पैन पर।
1: हर घर तिरंगा फहराए भारत का गौरव लहराए, हर घर तिरंगा फहराए भारत का गौरव लहराए। केसरिया जब त्याग सिखाए, श्वेत सत्य की राह दिखाए, हरित हमारी आशा हो, मन में करुणा की भाषा हो, नील चक्र कहता जाए, पग रुके नहीं बढ़ता जाए, हर घर तिरंगा फहराए भारत का गौरव लहराए, भारत का गौरव लहराए।
0: दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, बात करेंगे फिर छड़ी बात। और आज फिर छड़ी बात में दोस्तों हम लेकर आए हैं गाने दोस्ती जिंदगी है पर। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते हैं पहला गीत हमारे कार्यक्रम का।

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल चाहता है का टाइटल गीत शंकर महादेवन की आवाज में, संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने, बोल से सवारा था जावेद अख्तर ने। 7:46 हो चुके हैं दोस्तों, अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है दर्पण आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर। दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं रहने वाला हूँ 8 बजे तक आपके साथ। आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो मीडियम पर, और आप हमारे ये कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

फिल्म दोस्ताना से दोस्तों आप सुन रहे थे विशाल ददलानी की आवाज में। ये गीत विशाल और शेखर ने सजाया था, संगीत से अनविता दत्त गुप्ता के थे बोल। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

फिल्म सोनू के टिट्टू की स्वीटी से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। रोचक कोहली का था संगीत, कुमार के थे बोल। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के एक आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज में फिल्म थ्री इडियट्स से, और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा आप लोगों से मैं फिर कुछ दिनों बाद, ये तो वादा रहा, और अगला कार्यक्रम होगा इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द फिर आपसे।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच

0: मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान

0: कारण पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Manhattan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर पारेख, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारेख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,25,00,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए हैं और 1,00,00,000 से ज्यादा मकान पूरे भी हो चुके हैं। अगर इनिशियली हम देखें तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक शहरी आवास की तस्वीर में काफी बदलाव आया है, तो आपके विचार में इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो क्या था?
2: देखिए, पक्का हाउस मिलना ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज के का प्रभाव देख रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ये सब के जरिए हैविंग ए शेल्टर, एक अच्छा मकान होना एक जरूरी बात है। लेकिन एक दृष्टि देखिए तो जो सबको न पक्का मकान अर्बन एरिया में देना वो टारगेट था 2020

0: टू का, इसमें दो बहुत बहुत प्रगति हुई है, फिर भी टारगेट से हम दूर हैं। फिर भी जितना हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर रहने से, आबोहवा से, गर्मी से आपको राहत मिले। अरे इसके लिए हमको पक्का मकान की जरूरत है, लेकिन पक्का मकान की एक और भी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी
0: गरीब लोग को एक पक्का मकान अपना होना एक बहुत इज्जत की बात होती है, जो सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ता है, और लोग समझते हैं कि अच्छा इनके पास घर तो अपना है। और इसके असर काफी होती है, क्योंकि लड़के के लिए अच्छी बहू और लड़की के लिए अच्छा घर मिल सकता है उनके एक्सचेंज में।
1: जी
0: तो ये सब मेरे ख्याल से बहुत अगत्य की बात थी कि ऐसा पीएम आवास योजना अर्बन में ऐसी सुंदर घोषणा की सरकार ने।
1: पारिक जी, आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो दूसरा चरण है 2.0, तो जाहिर सी बात है इसे पिछली योजना के अनुभवों से सीख लेकर तैयार किया गया है और अगले 5 वर्षों में शहरी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी स्थितियों में अगर देखें तो किस तरह का बदलाव लाया गया है और किस तरह से जो चुनौतियां भी सामने आई उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: बात एक सच सच है कि पहले चरण में हमने लगभग 1 करोड़ लोग को आवास दिया है,
1: जी
0: और अगर हम दूसरे चरण में ऐसी प्रगति करें तो भी काफी होगी, बट इससे भी अच्छा कोई कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें क्या हुआ है कि सरली जो सब्सिडी दे वो कैसे मिलनी चाहिए, ये सब आसानी से हो गया है। तो पहले से इससे ब्यूरोक्रेसी की कम हुई है, यानी इसकी जरूर असर होगी कि कभी लोगों को पहले से एप्लीकेशन किया लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन आज बहुत सा अप्रूवल हो गया है
1: जी
0: और काफी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है। तो अगत्य की चीज ये है कि बस हम ये प्रोग्राम जारी रखें जब तक पूरा ध्येय हासिल न हुए, और ध्येय हासिल करने के लिए जितने ताकत, जोर और पैसे लगाना चाहिए।
1: पारिक जी, अभी जो 6 अगस्त को बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी, इसमें 2 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया कि 1,42,000 मकान लाभार्थी आधारित निर्माण और 67,000 से अधिक मकान जो है वो साझेदारी में किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो दो मॉडल रखे गए हैं तो इनका लाभ किस तरह के परिवारों को मिलता है और जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है या फिर अपनी जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन योजनाओं से?
0: इसमें बहुत से पहलू है। एक तो छते स्लम क्लियरेंस है, स्लम डेवलपमेंट, इसमें तो जे वहां रहते हैं स्लम ऑफिशियल स्लम रेसिडेंट है सबको मकान मिलने वाला है। ज्यादातर मकान देने में प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन नहीं मिलती है,
1: जी
0: लेकिन इसमें से जमीन मिल रही उनको मिल जाएगी। दूसरा पहलू ये है कि सरकार जिसके पास जमीन है अपनी उनको भी मदद करती है, और जिसके पास पुराना घर है उनको अपग्रेड करना चाहे इसके भी मदद होती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाई है। तो मेरा ख्याल से ये सब स्कीमों हैं 5-6 अलग अलग तरीके के, इससे नॉट ओनली EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन बट ऑल्सो मिडल और अपर मिडल को भी फायदा होगा। एंड इसका जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें, जिसको हमको मदद करते हैं वो धीरे धीरे उनके साथ जो दूसरे को मदद नहीं करती है इसके ऊपर वाले थोड़े, तो इनको होता है कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब हमको क्यों नहीं। मेरा ख्याल से जरा कॉम्प्रहेंसिव विचार करके प्रोग्राम बनाया गया है।
1: आइए सुनते हैं पीएम आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट। देश के शहरों में बिना पक्के मकान के रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक बड़ी पहल रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस योजना के दोनों चरणों के तहत मंजूर घरों में से लगभग 1 करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ये घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले और सभी मौसम में सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर इसे आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना

0: शहरी 2.0 शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को 4 श्रेणियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी द्वारा निर्माण, साझेदारी में आवास निर्माण, किफायती किराए का आवास और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है। बीते सप्ताह 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 1.42 लाख घर लाभार्थी द्वारा निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 67,045 घर साझेदारी में आवास निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मांग आधारित योजना है, यानी लाभार्थियों के आवेदन के बाद मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण और लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार योजना की प्रगति की निगरानी करती है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंजूर घरों को तय समय में पूरा करने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने पिछले वर्षों में शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब 1 करोड़ से अधिक घरों के पूरा होने के बाद अगली चुनौती मंजूर घरों को समय पर पूरा करना और दूसरे चरण के तहत तय किए गए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: परी जी, इस योजना में महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त स्वामित्व में मकान देने को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर किसी महिला को मकान दिया जा रहा है तो उसे विशेष प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल जो 1.25 करोड़ स्वीकृत मकान है, इसमें लगभग 1 करोड़ मकान जो है महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में है। तो इस तरह का जो फैसला है, ये महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका में किस तरह से बदलाव आपको बताता है, किस तरह से दिखाता है कि अब महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी बदल रही है?
2: महिलाओं को जब हम घर की मालिकी देते हैं तब उनका प्रभुत्व बढ़ता है, घर में उनकी एजेंसी बढ़ती है और ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जितना बने इतना करे। तो ये अच्छी बात है प्रोग्राम में कि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है और सबसे ज्यादा तो वीडोज को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ये जरूर से, इनके लिए उनकी घर में भी इनकी आवाज की कीमत ज्यादा होगी और लोग उनको इनका फैमिली नाम का जो फैमिली है वो भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक मांग आधारित योजना है और परियोजनाओं के प्रस्ताव जो हैं वो राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आते हैं, तो ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और शहरी नियोजन व्यवस्था के कारण योजना को कैसे मतलब चेंज किया जाता है कि किसी प्रदेश में इस तरह से ये आवास बनेंगे, दूसरे प्रदेश में दूसरी तरीके से बनेंगे, या फिर संख्याओं का जो वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं?
2: हमारा जो राष्ट्र है इसमें राज्यों की सरकार को काफी स्वतंत्रता मिलती है, तो इसको साथ में ले जाना जरूरी है। मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें सब राज्यों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे हित में है, जो उनकी सरकार है उनको भी लगेगा, इससे हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। मेरा ख्याल से राज्यों को तो अलग अलग करना है, लेकिन राज्यों को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी 1 डजन से हमारे यहाँ दरेक राज्य में अलग अलग सरकार है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, उसकी समझ नहीं आती है लोगों। और कभी कभी ऐसा एक लगता है कि ये तो अच्छी बात है, दूसरे को लगे कि इससे अच्छा दूसरा कोई है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो होने वाला ही है, बंधारण ने दिया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम को मठारित कर सकते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे दिया जाए, जितना बने इतना ज्यादा राज्य इसमें ना पूर्ण योगदान दे।
1: जी डॉक्टर पारिक, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात हम करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.18 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से करीब 88 लाख से अधिक मकान पूरे हुए हैं और इनमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ था। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो इतने बड़े निर्माण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और जाहिर सी बात है इसमें निर्माण सामग्री की भी काफी मांग होती है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों के लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए?
2: काफी लगता है फिर भी हमको देश में कितना कंस्ट्रक्शन, कितना बांधकाम हो रहा है इसके

0: हिसाब से इसको देना चाहिए। इससे सर्टनली थोड़ी बढ़त होती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कब से ज्यादा अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम से घर बांधने से सबका फायदा होता है, और खास करके वो अनस्किल्ड लेबर हो उनका।
1: जी, और सरकार का लगातार लक्ष्य ये रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं के साथ में जल जीवन मिशन को जोड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। बिजली जो पहले एक बड़ी समस्या मानी जाती थी, आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं, और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता है उससे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ तालमेल किया जा रहा है, इनसे नागरिकों के जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है?
0: पहले हमने आवास योजना बनाई थी, और आज की आवास योजना में ये जो बदलाव आया है अलग अलग प्रोग्राम का लिए, स्वच्छता मिशन, 95% से भी ज्यादा घरों में आजकल बिजली पहुंची है, तो
1: जी
0: इससे बहुत फर्क हुआ है। इसलिए लोगों का बस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षाओं बढ़ गई है।
1: पारिक जी, सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है लोगों को, ताकि वो अपने खुद का मकान जल्दी से जल्दी बना सकें। तो लोग इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
0: ये अलग चीज है कि बिल्कुल फ्री मकान देने की वजह सबको कहा है कि बस हम तो सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग आसानी से थोड़ा लोन अपने आप लेते हैं, और उसको फिर मेरा मकान है, मैंने इसका पैसा दिया है, ये सब भाव से उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी बढ़ता है। मेरा ख्याल से काफी असर होती है सबके ऊपर। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम है इसमें फाइनेंशियल एड सबको मिलती है,
1: जी
0: लेकिन इसको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल से अच्छी चीज है।
1: जी
0: क्योंकि खाली पूरी फ्री बिल्डिंग देने से क्या होता है कि लोगों के बस सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाती है, और इससे पोते अपने आप जो प्रयत्न करना चाहिए करने से कम होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार सभी बहुत सी तरीके से मकान में सहाय देती है फाइनेंशियल, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पूरा नहीं, ओनली पार्शल है एड इज गिवन।
1: जी डॉक्टर पारी, के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारिख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 241, श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
2: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
1: I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you.

0: Sriman GC Chandrasekhar ji.
1: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
0: I'm allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpayee ji.
2: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि ऑफशोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है.
3: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री.
4: चलोदी महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है. उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है. माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है, तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है. तीसरा है, सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय. चौथा है, तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे ऑफ इससे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है. कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेजल, फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है.
0: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी.
5: सर, ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट, हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी losses, if it is there, have it been measured, and I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and floods and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
0: Honorable Minister,
4: माने सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है.
6: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता की कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार

0: फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इस इलाके में लोगों के अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आज 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया ने बताया कि 3000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में आए भूकंप से हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। अमेरिका के बाद इसराइल में इस क्षेत्र के विलय को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला कोलंबिया एकमात्र अन्य देश बन गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायाधीश फखर अल दीन अल आर्यन ने असद को देश के सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में सरकारी संस्थानों को हिंसा का आदेश देने के लिए दोषी ठहराया है। असद के चचेरे भाई अतीफ नजीब और कई अन्य पूर्व अधिकारियों को भी मौत की सजा सुनाई गई है। कांगो में इबोला महामारी से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 4381 मामले दर्ज हुए हैं। 211 लोगों की मौत हो चुकी है और 704 मरीज अस्पताल और आइसोलेशन केंद्रों में हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विद्रोही संघर्ष, खराब सड़क और भुगतान विवादों के चलते काम बंद होने के कारण महामारी से प्रभावित दूर दराज के

0: क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के तहत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत और अमेरिका ने समझौते के अंतर्गत खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने के को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक से भारत और अमेरिका की पहल ट्रस्ट के अंतर्गत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला है। दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष नासा और इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की सफलता के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट का लॉन्च नाकाम हो गया है। लॉन्च के फेल होने की वजह की जांच की जा रही है। लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट पर चीन सेट 4B उपग्रह को देश के दक्षिणी द्वीप हैनान से लॉन्च किया गया था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Abhineet Shukla with The World News. The headlines. New Delhi stresses peace and tranquility in border areas essential for stronger ties with China, reiterates Arunachal Pradesh is integral part of India. POJK protests to go global from Thursday with calls for worldwide rallies to expose state-sponsored terrorism by Pakistan. Death toll from yesterday's powerful earthquake in western Colombia crosses 200. Syrian court sentences ousted former President Bashar al-Assad to death for crimes against humanity. And NASA invites ISRO to join its ambitious moon-based program under Artemis Accords. India today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Ardhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. The spokesperson said, this was also reiterated at the recently held 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination, that is WMCC, on India-China border affairs.
3: India-China border affairs, which was held on 6th. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstandings and miscalculations.

banana.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की

कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग

0: लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a probe by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, In matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the